शतांता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया मंत्रार्था सकला संतु पूर्णा शब्द मूलता तत्त्वं बुद्धिना